राशिफल भूत वर्तमान र भविष्य को पूरा जानकारी को लागी ज्योतिषाचार्य पंडित प्रेम प्रसाद सुवेदी को साथ में नेपाल भर एकै साथ प्रसारण हुने कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु सुन्न नभुल्नु होला।

0: तपाई रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।
1: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी चमक बसुगो रंगला मलंग पछबला सुगो जयमसी तथा लासो फ्याफुल्ला नमस्कार। स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी चमक बसुगो अंक 31 कार्यक्रम रंगनी स्वागत मुला न वियोग तामाङ। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ड्वेन्सी तिराम बिबमुवा रंगला रुइला नही बेनन मन महत्वपूर्ण दिन का दे रंग केबा दिन देन तिग्द केबा बिसी पत्ता लगबला बारी पिनबा हिनबा रंग याकर की अद्वितीय मी मुसुला तिनी गा रंगदा लसुबा माइबम पछल बारी प्रोत्साहित लबरी से मुला रोसे रंगला रोसे रंगदा रुइरी सचिन नोन आचरण तम हासिल लबा लक्ष्य पिनशुभ मुला यदि रंगसे रोसे पिनशुभ अवसर राशिजुजी विषम रंगसे रंगदा सेम मुबा ग्लारी सफल ताशिला मौका राशिजी विषम चु रंग देन रो प्रति अन्याय तलम लानन मिगादी रंगला मलांग पुरा लवरी हाइमा दमन कदम आलाजी लुई बिताव मुला थेनिगादी द माइका दे अवास्तविक देन प्राप्त लवरी असंभव तबरी हमला थेतासी थेनिगादेसी रोसी थेनिगादी लागिरी थन्सुमुबा योजना दा साकार लबरी आवश्यक प्रयास हाईमै आलामुला चु जम्बुलुङरी सोम प्रकारला मिगदी मुला तिगाई मिगदेसी अवसर गदी सिर्जना लामुला हालै कुडीसी रमुला हेन्दे हालै मामुला थेन्दे अलमलरी परपला मुला अवसर गदी सिर्जन लाभ मि दोबै दन्सुगो स्योन्दोला प्रभा छनुन बग्दीबा शिवा तरङ्गा थान्सुगो तोत्सा बोरी ग्याम धम्सुगो जम्बुलिङरी हाइमा दमन जम्बो लिङरी हान दमन मिगदी मुला जोशी रङला तिकै अनुभव मुला बिला थेनिगदी रङदा बिला कि रङ सफल तासिला हाजी भई सम्भावना अरे तसै रोदेन याकर कि फरक सन्देश मुला जुन रोसी याङला पिन्छु मुला जब याङला तिङरी रोसी थान्छुबा इच्छाला पछाबला मुस्युला रोसे थेराङबा ग्याम सोला जहाँ हाजी भई ग्याम अरे ऐश्वर्या 43 अध्यायला 19 च्यागो न याकर कि चार गङबन्द मुला थे दारेम तावरी हाला तिगा एनिगदी थे अनाङ मुला मरुभूमिरी याकर कि ज्ञान देन रुङबा सारी सन्गदे शोभा मुला हाइमा हाइमा गमला जहान वा रोग दिसे रङला माइका दे खाबरी बाध्य सोसेला तामगदे दोबरी हमला थेनिगदीले ताम थलासुगो परमेश्वर से रङदा किङदा ज्ञानो ज्ञानगो परमेश्वरलाई वचन तामा प्रतिज्ञा गदे ज्ञानगो चुसी रङदा परमेश्वर बुद्धि देन शक्ति प्राप्त लाभा दिशा मुभा रङ तिगा लाबरी हमसुल बिसी बङ्ला यहोशु 1 अध्यायला 9 एदाङला आज्ञा मुला बाङबा देन लानन साहसी हिन्दा आलोङ्गो निरा थादौ तिग्दा विषम ए हनङ निभा एदेन छ्याम भराम प्रभु एला रो एला छ्याम्री तला तिगै निगदेशी रङला माइलाई लिच्छ लगप तबारी थालिजी तसै थेलिच्छ थेनिगदी निराश ताजी देन हार मान्जी तिग्दा विषम थेनिगदेशी दातेन परिणाम गदे हमनङनी हार थाम्ले सुगो शैतान दा रङलाङ रङ्याम रङला म्लाङ आबरी थापिन्छुगो गलाती 6 अध्याय 9 दहेन से याङ जब गे लबरी लगबारी आत तिग्द विषम अभाव न जब गे लज विषम याङ से ठिक दुईरी बारी दुई मैला रङला म्लाङ पुरा लबरी हरेक दिन हाजीबाई नो हाजीबाई कदम चलाबला बारी सुगो सेमलाजी थे ता जज कदम नोन तिग्द थागै थातागै चुद निरन्तर पछ्याउला सुगो हाइमा आसन खासुगो देन बेनन बन्द महत्वपूर्ण ताम चु रङला दर्शन अहिन्बा परमेश्वरला दर्शन हिन्बा ताम दन्सुगो चु लसुगो थेन दे लला काङ्री अहिन्बा रोला काङ्री दर्शन थन्सुगो खेलिच रङ शान्ति वितला ताकि रङ रङला म्लाङ पुरा लाबरी हम्सु मुला आमेन। परमेश्वर जी रङनीला जीवनले प्रशस्त आशिष गई। प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवान विक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङला केही प्रतिक्रिया मुसम 01661946 री सम्पर्क लसुगो हस्त।

जी AI टीवी मा हेर्नुस फुटबल को हर एक एक्साइटिंग मोमेंट AI पिक्चर एंड साउंड संग अप टू 30% कैशबैक र 0% EMI नागरिकता भए पुग्छ बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू प्लस 4 इयर्स फुल वारंटी अब घरमै स्टेडियम एक्सपीरियंस LG लाइफ्स गुड

0: ओ मिज्यू नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार मिज्यू नमस्कार।
0: ल बधाई छ है, बिहे गर्न लाग्नु भएछ।
1: ल धन्यवाद धन्यवाद मिज्यू। अनि बधाईले मात्रै त पुग्दैन है मिज्यू, जनता गएर छमी नाच्नु पनि पर्छ क्या
0: है मिज्यू। म त